न जाने कहाँ दिल खो गया, दान न हजरत नती उन्हें को है दी देखे अला, मुझे नींद ना आए मुझे नींद लगना है, मुझे चैन ना आए मुझे सन सिर लगना है, मामू का दिखराने मगे हद वित नती वेला

आदरणीय तरंगा आदरण मंदारम रे हागे नी नहरी मिला सुनाई आदरे के नाद देखी मिलती मामा मनो आकुर कराने सतुटीन तवस गेवन वहर ओय आदरे के ना किया ना इतकुट सुंदर आई मांगा हांगी ना उदय आगे ने तुमी आदरे अकलगे ना तो अच्छर सतुटी अनिता ऐटात किया लदेन वंदर हासा आदरणीय तरंगा आदरे के अन्य मुद्दरी तर देख एक शारीरिक आवश्यकता व्यक्त ने वही नहीं था हम क्या ने लाला वो यह हम संगठ के एक में एक तो व्यक्त नहीं था अपितु बेहर तक अतने दिन नहारी अटमा समश्रद्धा समशील समपारित्यागे समतेरुम गनीम समान

जान मैं भी प्यार किया रे हाना ममत तो ऐड आद रे कला महत तो ऐड आद रे कला जान मैंने भी प्यार किया रे

हाँ, मैंने भी प्यार किया है। कल पे अगत हुआ था, कल इकुत नवेना मत के आने था। अपेरे मित्र वो सने सुमाकला द पीरी मी पापुओ को न होम। ओ, तानिका मके आने में ए ही मिवी आ ही मिवो मत के। कुट्टी कर सीरू टा असुराता बन मत के गबड़ा वटा। कुमारी पेरेरा। धन्यवाद तारांगा। कहने एक मटा हासे हंदरत वड़ा विश्वास वाचन। हरि अपूरोटे गोतला मगे में दुर्वल हिते कोहे दो ममत नो दन मूल्ल का गेट गया हुआ एतेत एया नो दन नो अद मंदा एक गोत पुवचन एया गेट गया हुआ तनीन एया मुद्रगेन दिव्वा निसा सिद्ध वनो तुआल कहलल तब मत कह गाना कियला तब तबत ओब मचन थियोना तब तबत ए तुआल वैटियोना ඔයා මගේ අමතක නොවන මතකය පැණි කලවැද්දෝ තවමත් ඔයා වෙනුවෙන් මේ හිත බලාගෙන ඉන්නවා මං මෙල්ලවා එන්නලා පැණි කලවැද්දෝ

देखो देखो ना देखो मालान को मैं वही बिंदु मैसी इतना होलंगा होलंगा मनोहर किया ना क्या लाही देने रहते रिंग जिम साथ देता लाही बिंदु लाही बिंदु नेट मका एंड मगे आतिंग अलगान එන්න මේ වැස්ස යටට එන්න මේ හුලඟ බදාගන්න සීතල වැස්ස යට හුලඟත් බදාගෙන